0: ये नग दुगे
1: शान ना बिचु ना पोसु तो जे ओ ना तुम दो
2: लिंग फो नाई
1: किनी कमी
0: अलीबुदा किनी के शेयर यू

0: उन्हें तो रहा था। ताकि तू तीव्र दी नियमित गुड़ सब कुछ करके ताकि उन्हें चाय आती जाए बुरी।
1: रिशा, चिकित्सा लेकिन कुंजी के जिले के शा।
0: रंग से रंग ता तो ने रिकूट नियमित गुड़ मुक्त चाय आती चुनिया ता मुक्त कुछ ना लो ताबो तो समझा जितने चुनिया मारे। लोबो, लोटियों वामी कुंजो के नालो रो यो रंग के देना कुंजो कुंजी के जिस द 今天我有些也要给他从头说呢可这多。

0: ये शिविर तादें ये कर्शन ये चुने पसुर चुने इने ये किजु नाला कोमु सुशुई ये आजा दा चुबी चिता डी हो मारी
1: रांचु मसा लो मारी रांगु मुझे में बा
0: चाबु शिया ना तंगी ना चुनी दी सांग तो चेस को चु ये ने जु चामा मा शेप शेप सांग शेवी नो काके चिमा दी सांग चु ये सांग दा या तो दिखा शुशा या में ना让农民害怕动手。你阿家的猪不要猪呢，不做牛给猪呢。
1: 你阿妈给天门送给，可是人家猪不打阿家的，很多娘子人家要命呢。俺就吃牡丹，他就吃你。
0: 阿家来了，不都其他猪呢？你是个有，这点他的。咱们弄了这个素材，可是太香干了。
1: 你俺们那边没是得没牛白来吃牛肉嘛的？光点卡塞丁塞杰，点么多也卡里呢？
0: 你得这生意，下面你阿家，真正丢死了，学了猪尿当苦。
1: 人家阿家的，俺就农民卡把钱给你，他把东西买是乐不着。让给谭德杰明明的约不赢的嘞，那就他就吐嘛的。
0: 看到俺最多是点嘛，对不起，两个球喽。
1: 你让给了看过有不新的鱼？切过呀的，切毛过呀，咱们让给切不急。明明你给咱们切过三呢，用呀用嘛的。
0: 那你们都这么正规嘞？他最近啊，特别没你们要嘛就。
1: 我刚来可以。让我来，刚来考一级的。一片鸡来日，